0: मौका लग्या है तो वाई नॉट अपनी लाइफ में इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए। गर्म धुप सर्दियां जड़ियां ने वो चल रही हैं, खबरां दे उत्ते भी नजर मारेंगे क्योंकि तुम सोच रहे हो कि खबरों की गल नहीं की, आप खबरों वाले पासे भी जाना तो खबरों च की कुछ आ रहा उन्होंने उत्ते भी थोड़ी जी नज़र मार के तो गलबात अगे लैके जाना। सो टोरंटो दिया खबरों के नाल नाल एक खबर जी जी वो गीत जरा नवे तो वैसे कई आ चुके नहीं ते, क्योंकि नवे नवे गाने जड़े है वह भी देखने चाहिए ने। एक मेरी अखा सामने हो रही टूरिस्ट न भड़का के मारे जी इस बायजन ने, ते हवा दे फोटो भी किसी ने खिंची जिस तरीके ने उन्होंने चुक के मारा गया, ये भी एक खबर जड़ी है जी बन रही है। ते सतलुज के रलदिया मिलदिया कल काफी खबरों से गल्ला बात आप कीतियां, अज भी लगातार लोग जड़े ने कुछ इस फिल्म ध्यान च रखते हुए कुछ पॉजिटिव ते कुछ नैगेटिव खबर भी मैसेज देंगे ने, क्योंकि जिस करके फिल्म बनी सी ह्यूमन राइट्स करके लोग वो गल नू घट समझते हैं, बट होया क्यों सारा कोई ए बारे भी वो गलबात जी है वो करनी यादगारी रखते हैं। उस तो अलावा जी एक वही खबर है वो दुनिया भर के चल रही है जी काफी सारे दिमाग से आती बार बार, वो ये भी खमनाई जेडे ईरान के सुप्रीम सिगे उन्हों की हत्या का बदला लैन के चक्कर च ईरान कहते भी हूँ सारे लोगों लभदा फिर कि कदे कदे बदला लेना है, तो स्पेशली ट्रंप भी जरा अंदर बाहर हो रहा है, बाकी दे भी जेडे रिलेटेड लोग ने वो भी इसे तरीके दलातों काफी लोगों का नाम वैसे आ रहा है जिन्हों का जिक्र चल रहा, तो की करते हैं भी थोड़ी जी खबर सुन लेने रिलेटेड, तो फिर इस तो बाद आप अपनी गलां बात के सबरंग रेडियो 94.7 जरा कि मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7 तो 8 संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो थोड़ी जी गलबात सुन के, फिर इस तो बाद आप वापस मिल के अपनी खबरों से गलां बात इसे तरीके ने शेयर करेंगे। एक इस खबर तो बाद
1: नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का यह दौर हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर हो रहा है, या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के एक ऐलान ने ट्रंप को झपकी से जगा दिया है कि जिसने भी आयतुल्ला खामेनेई की हत्या की है, ईरान के नागरिकों को मारा है, उन सभी की मौत चैन से नहीं होगी। अब से यह हर ईरानी का दैविक मिशन होगा कि ईरान पर हमला करने वालों को कब्र में पहुंचा दे। ट्रंप, जिन पर दो दो बार हमले की कोशिश हो चुकी है, क्या इस बार मुज्तबा खामेनेई के बदला लेने के ऐलान से हिल गए हैं? जुलाई 2024 में एक रैली के दौरान उन पर गोली चली। गोली चलाने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को ढेर कर दिया गया, मगर इसके पीछे ईरान का नाम लिया जाने लगा। ईरान ने इसे थर्ड क्लास साजिश बताते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अमेरिका और इसराइल यह सब करते हैं। इसी तरह की कोशिश सितंबर 2024 में फ्लोरिडा गोल्फ क्लब में भी हो चुकी है। वैसे ट्रंप को टारगेट करने की साजिश और अफवाहों की थ्योरी में ईरान का ही नहीं, रूस और इसराइल का भी नाम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसका अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत पर गहरा असर पड़ने वाला है? लेकिन उसके पहले यह जानना जरूरी है कि 7 जुलाई से ईरान और अमेरिका के बीच स्थिति कैसे बदल जाती है। रविवार 12 जुलाई की सुबह से लेकर अब तक ईरान, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर 5 दौर के हमले कर चुका है। संयुक्त अरब अमीरात ने 17 मई के बाद पहली बार मिसाइल अलर्ट जारी किया और सीमा पर ईरान की मिसाइलों के खतरे की बात की, मगर हमला अभी दुबई में नहीं हुआ है। कुछ हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात की गई है और दुबई को भी अलर्ट पर डाला गया है। बाद में यह भी खबर आई कि खतरा यूएई की सीमा के बाहर था। रविवार को इसराइल को भी टारगेट नहीं किया गया, मगर खाड़ी के 5 देशों में जहां भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, ईरान ने उन पर तूफानी बमबारी की। साफ है, ईरान इस बार अरब देशों को उस हाल में पहुंचा देना चाहता है जहां वे मजबूर होकर पर्दे से

बाहर आ जाएं और इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर उस पर हमला करें या लड़ाई करें उससे। फरवरी से लेकर अप्रैल की जंग में खाड़ी के देश इससे बचते रहे। उनकी जमीन पर अमेरिका के सैनिक अड्डे बने हुए थे। सवाल उठते रहे कि क्या अमेरिका ने इन ठिकानों से भी ईरान पर हमला किया है, मगर यह देश खुलकर अमेरिका के साथ ईरान से नहीं लड़ पा रहे थे। क्या इस बार अरब देश इसराइल के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान को टारगेट कर पाएंगे? 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए अरब देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। उससे लगता है उन पर भी खामेनेई की शहादत को लेकर भावनात्मक दबाव रहा होगा। ईरान इसके जरिए खाड़ी के देशों को मजबूर करना चाहता है कि अमेरिका यानी इसराइल का साथ छोड़ दें, या फिर उन्हें छिपकर मदद देने के बजाय खुलकर सामने आ जाए। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के ताजा हमले को खाड़ी की संप्रभुता पर हमला बताया है, मगर ईरान उन पर इसलिए हमला नहीं कर रहा क्योंकि वे खाड़ी के देश हैं, बल्कि इसराइल और अमेरिका के सैनिक अड्डे वहां बने हैं। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तनातनी तो फरवरी के महीने से रही है, लेकिन क्या होर्मुज ही कारण था या ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का ऐलान भी कारण रहा होगा? 12 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए, दक्षिण और पश्चिमी ईरान के 300 ठिकानों पर हमला किया। दावा किया कि ईरान ने इन जगहों पर मिसाइलों, ड्रोन, रेडार का जखीरा रखा था, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन उसके एक दिन पहले 11 जुलाई को मुज्तबा खामेनेई के लिखित बयान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे पिता और देश के नागरिकों को मारा है, वे कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। ये अपराधी हैं, इनकी पूरी सूची हमारे पास तैयार है। यह लोग अपने बिस्तरों पर चैन की मौत नहीं मरेंगे, अपनी इस हसरत को लेकर ही कब्र में जाएंगे, और यह बदला हर हाल में लिया जाएगा, चाहे मेरा अस्तित्व मिट जाए या कोई अधिकारी ना बचे। मुज्तबा खामेनेई ने इसे हर ईरानी के लिए दैविक मिशन बता दिया है। कहा है कि जिन लोगों ने आयतुल्ला खामेनेई की हत्या की है, वो अब नहीं बच पाएंगे। मतलब अब कोई भी स्वतंत्र है अपने हिसाब से कहीं भी बदला लेने के लिए। क्या उनके इस संदेश ने ट्रंप को भड़का दिया, असुरक्षित कर दिया, या फिर ट्रंप होर्मुज के कारण ही हमलावर होने लगे हैं? इन दो सवालों की पड़ताल करनी चाहिए। दोनों के बीच क्या संबंध है जानना चाहिए। 11 जुलाई के दिन ही ट्रंप ने इसका जवाब दिया था कि 1000 मिसाइलें ईरान को निशाना बनाकर लॉक और लोड हो चुकी हैं, हजारों और मिसाइलें तैयार हैं। अगर ईरान अपनी उस धमकी पर अमल करता है जो उसने दुनिया के अलग अलग कोनों से जारी की है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या करेगा या हत्या करने की कोशिश करेगा, इसके आदेश दिए जा चुके हैं, और अमेरिका की सेना 1 साल तक ईरान के हर इलाके को बर्बाद करने के लिए तैयार है, मंजूर है और सक्षम है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने संदेश में किसी का नाम नहीं लिया, मगर ट्रंप ने इस संदेश को अपने नाम से ही पढ़ा कि उन्हें टारगेट करने की बात मुज्तबा खामेनेई ने की है। जिस तरह से आयतुल्ला खामेनेई के प्रति लोगों ने श्रद्धा दिखाई है, ट्रंप बदले की बात को लेकर आशंकित हो गए होंगे। 28 फरवरी को जब आयतुल्ला खामेनेई की शहादत हुई, तब उसकी घोषणा 1 मार्च को ट्रंप ने की और उन्हें शैतान बताया, दुनिया का सबसे बुरा आदमी। अमेरिका और इसराइल ने जश्न मनाया। एक मार्च 2026 को ही ईरान के राष्ट्रपति पेदेशकियां ने इस ऐतिहासिक अपराध का बदला लेने की बात कह दी थी, मगर जंग के दौरान ईरान खामेनेई की हत्या को भूला तो नहीं, मगर इस तरह की बातें पीछे चली गई। 9 जुलाई 2026 को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की खाके सुपुर्दगी के बाद 11 जुलाई को नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के इस ऐलान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी होगी। इस बीच 8 जुलाई को ट्रंप एक और बात कहते हैं। ट्रंप ईरान के पड़ोस में थे, तुर्की में नेटो की बैठक में शामिल होने गए थे।
वहीं पर

0: ट्रंप बातचीत खत्म होने का ऐलान करते हैं, कहते हैं ईरान के साथ अब खुलकर जंग होगी, उसे बर्बाद कर देंगे, ईरान के लीडर कैंसर के समान। उस दौरान ट्रंप ने एक और बात कही, कहा कि वे ईरान के टारगेट पर हैं, उनकी जान को ईरान से खतरा है।
1: You've spoken today twice about them possibly assassinating you and possibly being successful. Did that concern have something to do with
2: it? Well, I speak about it a lot because, you know, the life of a president is very dangerous. It's 5.2%. You know what a race car driver is? 0.1%. A bull rider, that looks pretty dangerous. It's 0.1%. No, it's 5.2% is you don't make it. You should have told me you're an excellent reporter. You should have told me that years ago. Maybe I wouldn't have run. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one.
0: 8 जुलाई 2026 को ट्रंप कहते हैं वे ईरान के टारगेट पर हैं। 11 मई को मुज्तबा खामेनेई का लिखित संदेश आता है कि जिन लोगों ने उनके पिता की हत्या की साजिश रची वे चैन से नहीं मरेंगे, यह बदला हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमेरिका में इस बात को लेकर काफी बहस है कि नेतन्याहू ने गलत जानकारी दी, ट्रंप को भरमाया और खामेनेई की हत्या के लिए उन्हें तैयार किया, समझाया कि खामेनेई के बाद ईरान की जनता सड़कों पर आएगी और वहां नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। ईरान की जनता सड़क पर तो आई करोड़ों की संख्या में, लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई की विरासत को रौंदने के लिए नहीं, बदलने के लिए। बल्कि उनके जनाजे को ऐतिहासिक बनाने के लिए और बताने के लिए कि आयतुल्लाह खामेनेई उनके लिए क्या मायने रखते थे। खामेनेई के जनाजे में ट्रंप के खिलाफ भी नारे लगे, इस तरह के पोस्टर बैनर भी दिखे जिन पर लिखा था हम ट्रंप को मार देंगे। हो सकता है ट्रंप के मन में यह बात रही हो कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे उनकी जान को खतरा रूस और इसराइल से भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बताया जाता है। अब आप सोचिए 3 जून 2026 को ट्रंप न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पॉडकास्ट में कहते हैं वे मुज्तबा खामेनेई से मिलना चाहेंगे, हम शायद किसी मोड़ पर ना मिले मगर उनसे मिलना सम्मान की बात होगी। अब उसी मुज्तबा खामेनेई का संदेश आ जाए कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या, हर ईरानी की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाएगा, इसे सुनकर किसी के भी हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं। जिनके पिता आयतुल्लाह खामेनेई को ट्रंप ने इतिहास का सबसे बुरा इंसान कहा, उनसे ट्रंप मिलना चाहते थे। क्या तब ट्रंप के मन में यह बात रही होगी कि ईरान खामेनेई की हत्या का बदला लेना चाहेगा? मुज्तबा खामेनेई लिखित संदेश जारी करेंगे? हो सकता है ईरान को लगा हो कि ईरान MOU की शर्तों से बंधा रहेगा और बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कितनी बार कहा गया कि नेतन्याहू किसी भी सूरत में इस बातचीत को सफल नहीं होने देंगे, 60 दिनों से पहले ही अमेरिका को मजबूर कर देंगे कि ईरान पर हमला करे। लेकिन उस वक्त ट्रंप जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, 17 जून को उन्होंने MOU पर साइन कर दिया, उससे यही संदेश गया कि ट्रंप नेतन्याहू को झटक देना चाहते हैं, उनके कब्जे से निकलकर किसी भी तरह से जंग के मैदान से वापस अमेरिका जाना चाहते हैं। उस समय इसराइल और नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका के बड़े ओहदेदारों की तरफ से कितने ही बयान आए, तो इसका कारण खोजा जाना चाहिए कि क्या होर्मुज को लेकर ही इस बार टकराव इतना बढ़ा है, या फिर इसके पीछे 11 जुलाई को जारी मुज्तबा खामेनेई के संदेश का भी रोल हो सकता है। इस कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर और ट्रंप के करीबी लिंडसी ग्रहम के निधन की खबर ने भी अफवाहों की थ्योरी में पंख लगा दिए। 71 साल के लिंडसी ग्रहम की 12 जुलाई को अचानक किसी बीमारी से मौत हो गई। इसराइल के समर्थक थे और इसकी वकालत करते थे कि अमेरिका सीधे ईरान पर हमला करे, उसे बर्बाद कर दे। लिंडसी ने गजा में इसराइल के हमले को सपोर्ट किया और कभी नहीं माना कि इसराइल ने वहां नरसंहार किया है। यह भी खबर है कि लिंडसी सऊदी अरब

के दफ्तर ने ऐसी किसी आशंका से इनकार किया है। लिंसी ग्राहम के निधन के पीछे भले किसी साजिश का हाथ ना हो, मगर मुज्तबा खामेनेई का यह संदेश अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू के दायरे से बाहर है, एमओयू के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। बदला लेने की बात यह भी है कि मुज्तबा खामेनेई एमओयू या शांति की बातचीत की प्रक्रिया से ऊब गए हैं। होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर टकराव तो होना ही था। इंतकाम के इस संदेश ने जंग को और भड़का दिया। पिछले तीन दिनों में अमेरिका ने कुल 300 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है, जिस बातचीत को मौका देने के लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को किनारे कर दिया। फ्रांस के वर्साई पैलेस ने ईरान के साथ एमओयू पर साइन कर दिया, उसे खत्म करने का एक तरफा ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? अब तो दोनों तरफ से कहा गया कि बातचीत समाप्त हो चुकी है। क्या अमेरिका पहले दौर की हार की भरपाई इस दौर में कर पाएगा? अगर इस दौर में भी अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा, बातचीत पर ही लौट कर आना पड़ा, तब ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव 7 जुलाई से ही शुरू हो गया, जब ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग के बजाय ओमान के पानी से जहाज गुजरने लगा। ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर दिया और जवाब में अमेरिका ने उसके इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। ईरान का कहना है कि अगले 60 दिनों के लिए जो सहमति बनी उसके अनुसार होर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा ईरान के प्रभाव वाले समुद्री रास्ते से ही जाएगा, ईरान की इजाजत से ही जाएगा। लेकिन जून के अंत में अमेरिका, ओमान और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की। तेहरान को लगा उसे बिना विश्वास में लिए यह सब किया जा रहा है। ईरान की आईआरजीसी ने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद ईरान ने 25 जून को एक व्यावसायिक जहाज पर हमला कर दिया जो ओमान के रास्ते जाने की कोशिश कर रहा था। 7 जुलाई को ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया जो उसकी अनुमति के बिना ओमान के प्रभाव वाले समुद्री मार्ग से जा रहे थे। ईरान का जोर इस बात पर था कि इन जहाजों को उसके प्रभाव वाले मार्ग से ही जाना होगा। ये तीनों जहाज कतर, सऊदी अरब और लाइबेरिया के थे। ईरान ने तीनों पर हमला किया और 7 जुलाई को इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पर, अमेरिका का कहना था इन जहाजों में मासूम नागरिक सवार थे, फिर भी ईरान ने टारगेट किया। हमला बिना किसी उकसावे के हुआ, खतरनाक था और युद्ध विराम का उल्लंघन था, इसीलिए अमेरिका हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भी हमले को तेज करने का बहाना ढूंढ रहा था। एक साथ 80 से अधिक ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिका ने तब कहा कि यह हमला होर्मुज में ईरान की क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। जिस ईरान की नौसेना को ट्रंप बार बार खत्म बता चुके हैं, आज तक उनकी सेना को उस पर हमला करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज से जहाजों की आवाजाही अब काफी कम हो गई है। रॉयटर्स ने कहा है रविवार के बाद से 6 टैंकर ही गुजरे। ईरान की सेना आईआरजीसी का कहना है होर्मुज पूरी तरह बंद है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है होर्मुज पूरी तरह खुला है। ईरान कहता है होर्मुज पर उसका नियंत्रण है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। ईरान कहता है होर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। अमेरिका का सेंट्रल कमांड कहता है उसकी सेना की सुरक्षा में जहाज गुजर सकता है। ईरान अब होर्मुज को लेकर अमेरिका से बात नहीं करेगा। 17 जून के एमओयू के पहले भी ईरान की होर्मुज को लेकर यही लाइन थी। समझौते में भी इसी तरह लिखा गया कि होर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा ईरान के साथ तालमेल बिठाने के बाद ही। अमेरिका कहता है इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसने होर्मुज पर ईरान का दावा मान लिया। झगड़ा इसी को लेकर है, इसकी भाषा को लेकर। एक तरह से डील में ही बात साफ साफ नहीं लिखी है। दोनों देश जंग के मैदान में अब लौट आए हैं। सवाल है कि इस बार की जंग क्या बहुत लंबी खींचने वाली है?
28 फरवरी 2026 को जंग शुरू हुई।

0: tell with the derailment, there is a sub-category which is not in Patna. So, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਰਨ ਰੇਡੀਓ 94.7।
1: आपको पता है यूनिवर्स की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रहस्यमयी देन क्या है? ब्रेन, इंसानी ब्रेन। ऐसा मैं नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट आज भी दिमाग का अध्ययन या उसकी स्टडी वैसे ही कर रहे हैं जैसे पुराने जमाने में नक्शा बनाने वाले अनजान जगहों का नक्शा बनाते थे। छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करके एक बड़ी तस्वीर पेश करते थे। ज्योग्राफिकल मैप्स तो फिर भी तरक्की कर गए हैं लेकिन इंसानी दिमाग की पूरी एक बड़ी तस्वीर लेना अभी भी टेढ़ी खीर है। इसे ऐसे समझिए कि अल्जाइमर जैसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए पैथोलॉजिस्ट दिमाग से कुछ ही टिश्यूज को सैंपल के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि 86 अरब न्यूरॉन्स वाले इस ऑर्गन का बहुत बड़ा हिस्सा हम देख ही नहीं सकते। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट के एक समूह ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। वो क्या है ये सब बताने से पहले ये बता दूं कि IIT मद्रास की सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर यानी SGBC का दावा है कि उन्होंने ब्रेन साइंस से जुड़ा एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो न्यूरो साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी खाई को भर सकता है। दरअसल ह्यूमन ब्रेन की मैपिंग करना और उसके हर हिस्से तक पहुँचना मुश्किल काम है क्योंकि लाइट या रोशनी हमारे ब्रेन के टिश्यू के सिर्फ 1 मिलीमीटर गहराई तक ही पहुंच सकती है। ट्रेडिशनल MRI स्कैन एक बड़ी तस्वीर तो दिखा पाते हैं लेकिन इंडिविजुअल सेल्स को नहीं देख पाते। दरअसल ब्रेन के 86 अरब न्यूरॉन्स आपस में बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स और फैले हुए तरीके से जुड़े हैं जिसका मतलब है कि गहरे हिस्से लंबी दूरी के एक्सॉन्स के माध्यम से जुड़ते हैं। हमारा ब्रेन अरबों न्यूरॉन्स के जरिए हमारी बॉडी से बात करता है और एक्सॉन्स वो केबल है जो इन मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं यानी एक्सॉन्स एक तरीके से वो दूत है जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। SGBC का दावा है कि उन्होंने इंसानी दिमाग के ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल्ड 3D एटलस तैयार किया है। इसे सेल्यूलर रेजोल्यूशन पर तैयार किया गया है और ये भी दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिक इससे न सिर्फ पूरे दिमाग का MRI स्कैन कर सकते हैं बल्कि इंडिविजुअल सेल्स को भी मैपिंग कर सकते हैं। इसे एंकर यानी एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन नाम दिया गया है। काफी भारी नाम है लेकिन इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन स्टेम का एक 3D डिटेल्ड एटलस या नक्शा तैयार करता है। 8 केमिकल मार्कर्स की मदद से अलग अलग तरह की सेल्स को पहचानने में मदद मिली जिससे मस्तिष्क के इस बेहद इम्पोर्टेंट लेकिन कम समझे गए हिस्से की अब तक की सबसे साफ तस्वीरों में से एक सामने आई। ब्रेनस्टेम दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और सांस लेने, धड़कन, सोने, जागने और शरीर की हलचल को काबू में करता है। सेल का मतलब होता है वो सबसे छोटे कण जिससे शरीर का हर हिस्सा बना है और नर्व सेल का मतलब है न्यूरॉन यानी वो सेल जो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं जो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं यानी अगर प्लेट गर्म है तो उसका एहसास हमें नर्व सेल के जरिए ही होता है। हमारा दिमाग मूलतः 3 हिस्सों में बटा हुआ है, फोर ब्रेन यानी ब्रेन के आगे का हिस्सा, मिडिल ब्रेन और हाइंड ब्रेन यानी पीछे का हिस्सा और इन्हीं सब के बीच होता है ब्रेन स्टेम। ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को मिलाकर कहते हैं और ये दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। SGBC के प्रमुख मोहन शंकर शिव प्रकाशम ने BBC को बताया कि साइंटिस्ट ने कई जानवरों की प्रजातियों के दिमाग को काफी बारीकी से देखा है और उसका नक्शा तैयार किया लेकिन उसकी तुलना में इंसानी दिमाग का नक्शा अभी भी काफी अधूरा है क्योंकि इंसानी ब्रेन के टिश्यू पर बहुत ज्यादा स्टडी अध्ययन नहीं हो पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिकों के पास ब्रेन एटलस की कमी रही है, वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि दिमाग के लगभग 20,000 प्रोटीन इसके अलग अलग हिस्सों और सेल्स के प्रकारों में किस तरह फैले हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जो अगली पीढ़ी के ब्रेन मैपिंग को तय कर सकता है। SGBC का प्लान है कि अब वो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से जुड़े करीब 100 लोगों के दिमाग की मैपिंग करे। इससे एक ऐसी रेफरेंस लाइब्रेरी तैयार होगी जो बताएगी कि कोई भी बीमारी सेल दर सेल किस तरह दिमाग को बदलती है। ये नया एटलस दिमाग से जुड़े रहस्यों को सुलझाएगा नहीं लेकिन वैज्ञानिकों को

0: एक डिटेल्ड नक्शा देगा जिसके जरिए वो बेहतर सवाल पूछने और फिर उसके जवाब ढूंढने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे।
1: गुत्थियां जड़ियां के सुलझाने की गलबात की जा रही है ते साइंस काफी तरक्की कर रही है जिदा मैं पहला भी गलबात की थी ए रिलेटेड या होर साइंटिफिक चीजा जड़िया ने अगे बद के आ रही ने इन्हां चीजा का डेफिनेटली फायदा जरा आने वाले टाइम के इंसानों होना चाहिए क्योंकि चंगे तरीके काम होएगा तो उन्हें वधिया हर इंसान को चंगे तरीके जीन का हक जरा मिलना चाहिए जिहड़ा लोगों ने लिया भी इस स्टैम्पीड के मौके खूब फायदा लोगों ने चुकया इस गल का इंजॉय किया। पहला कल धालीवाल साहब कह रहे थे भी ये इस बारी पहले जिनी रौनक नहीं लगनी बट फिर तो जरा मैसेज है वो कि स्टैम्पीड के जेडे सीईओ ने उन्हों का यही है जोल कॉली जो कहते ने भी आलमोस्ट इस टाइम के उत्ते 1.4 मिलियन लोग जड़े ने उन्होंने स्टैम्पीड कैलरी विजिट किया इस बारी फिर तो आलमोस्ट उन्ने लोग जिन्हें पिछली बारी भी दसा गया से आलमोस्ट उन्ने लोग आए ने। अफोर्डेबिलिटी भी एक चैलेंज है कि जिदे करके लोग थोड़े जे अगे के मुकाबले एक्सपैक्टड घट हो बट यह है भी 10 दिन का प्रोग्राम से जिसे मार कारनी भी कल पहुंचे तो उस तो अलावा मैं देख रहा से लिबरल वाले कह रहे भी 40 MLA लिबरल दे थे इस बार आए थे हालांकि अलबर्टा च तो 1 ही MP है अलबर्टा नहीं मतलब कैलगरी के पर बावजूद जोड़े ने दुनिया भर तो मतलब कैनेडा वाइड तो जोड़े ने बाकी के MP भी जोड़े इतने पहुंचे इनकलूडिंग प्राइम मिनिस्टर सो 40 कहें भी MP जोड़े है साढ़े इतने इस बार आए हैं बट डेफिनेटली जो लोकल MPs ने वो तो इतने पहुंचे पहुंचे उन्होंने तो इतने अपना इंजॉयमेंट की उन्होंने यी हा की जगह पर याहू क्योंकि याहू ज्यादा लोगों ने सौखा लगता यी हा नहीं आता सो इस करके वो याहू भी कहते थे सो ये कोरी होगन जो लोकल MP भी ने लिबरल पार्टी के उन्होंने अपने पोस्ट के दसिया। इस तो अलावा प्राइम मिनिस्टर के नाल होर भी बड़ी एक्टिविटीज जड़ियां ने थ्रू आउट द 10 दिनों के हुई बड़े लोगों ने बहुत इंजॉय किया अलग अलग जगह पर गए आए अपने काम काज जो किए सो ओवरऑल जो देखा जाए तो काफी वधिया माहौल जरा इस बारी स्टैम्पीड का रहा आई बिलीव भी वधिया काम करते रहा ही रहा नाल ही चंगा फायदा भी मिले है एक छोटी जी ब्रेक का समा भी हो गया जी सो एक ब्रेक लैने मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7 बजे तो लैके 8 बजे तक संडे 1 बजे तो लैके 5 अज का प्रोग्राम इसे तरीके ने चलेगा एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक लेने ब्रेक तो बाद वापस मिलते हैं।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ।

0: आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
1: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hethe immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karne layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
2: Regulated Canadian Immigration Consultant.
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: आज कवित्री एक भी ना बुलाई. नहीं, दरअसल क्या है, श्रृंगार रस नहीं हुआ ना बिल्कुल. हाँ. इनमें से किसी की शक्ल ऐसी है जो श्रृंगार सुना दे. अच्छा, मेरी थोड़ी बहुत ठीक है तो हरियाणा का. कोई श्रृंगार से मतलब ही नहीं. नहीं, हरियाणा में जो है प्रेम जो है वो ब्याह के बाद होता है. ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते
4: हैं.
3: हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है. वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं. भले से तेरी हो जाऊंगी तो सब क्यों होने देगा. ये भोलापन है जी. ये भोलापन है. अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए. बोले भाई कैसे बौखला रहा है. बोले यार मेरी लुगाई खो गई, से ढूंढ रहा हूँ. अब बोले तू. बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ. बोले तेरी लुगाई कैसी थी. बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी, तेरी कैसी थी. है बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं. तो हमें अपने प्रेम का पता है जी. अभी वो एक पत्नी मर गई तो उसने चित्रकार को बुलाया. बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे.
4: अच्छा.
3: बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा, चित्र बोल उठेगा. बोले फिर रहने दे. अभी वो फरवरी में आएगा वो वैलेंटाइन पखवाड़ा. नहीं, पूरा पखवाड़ा होता है वो. पहले 7 दिन चलते वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, और रोज डे से शुरू हो गया और ब्रेकअप डे तक. तो उसमें एक प्रपोज डे भी आता है. वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया. बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ. तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर. तो लड़का बोला ईसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी.
4: गजब गजब. वाह वाह वाह.
3: विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव. ये हमारे यहाँ ही संभव है. और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है. वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है. अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया.
5: ਸਿੱਖੀ ਜੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਵੈਸੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਇਨ ਸ਼ਪਾ ਕੈਟੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ.

0: ਸੈਂਟਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 4039036757 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स
2: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 5876174696 587-617-4696 ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 5876174696
3: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट अमृत बराड़ आपका अपने इस प्रोग्राम में खैर मद्दम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों कैलगरी का मौसम बहुत बढ़िया इस समय आप बाहर निकलें और बच्चों के साथ फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ एंजॉय करें जितना ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि कैलगरी में मौसम चेंज होने का कोई भी टाइम नहीं है कोई भी दिन नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकता है तो जो भी हमें मिल रहा है उसको भगवान की कृपा समझें और उसको एंजॉय करें आज का प्रोग्राम एम्पावर करते हैं वाईवाईसी होम केयर सर्विसेज जिनका मानना है केयरिंग फॉर यू राइट एट होम अगर आपको उनकी सर्विसेज के बारे में जानना है आपके घर में बुजुर्ग हैं आपको उनकी सर्विस के लिए उनकी सेवा के लिए सर्विसेज चाहिए तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट करें 8257600983 पर सो दोस्तों हमारे बॉलीवुड में और हमारे देश के जितने प्रांत हैं उनमें बहुत सारी फिल्में बनती हैं और हमारे पंजाब में भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो कि हर जगह जहां पे भी पंजाबी बसते हैं पूरे इंडिया पूरी दुनिया में वहां पर ये पिक्चरें रिलीज होती हैं तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही जाने माने डायरेक्टर जुड़े हैं जो कि अपनी नई फिल्म लेके आ रहे हैं चंद कितना गुजारी आई रात ये फिल्म का टाइटल है और इस फिल्म में क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरह की इसकी स्टोरी लाइन होगी इसके बारे में बताने के लिए फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर नवरीत मोती जी और हमारे बहुत ही जानी मानी हस्ती कैलगरी की राजेश गंगाहर जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा पाजी सत श्री अकाल बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में
4: सत श्री अकाल पाजी सुर संगम दी पूरी टीम दा ਧੰਨਵਾਦ
3: ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ
5: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ
3: थैंक यू सो मच सर ते नफरीत जी अपा एक एक एक जिहड़ी फिल्म हैगी उहदे च उत्ते बाद च आवांगे पहला तां दसो थोड़ा अपने बारे कि तुसी किवें फिल्मां दी इस लाइन च आए कहिंदे आ कि बड़ा औखा सफर हुंदा है ते एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नू कई बार बहुत मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है बट हाउ डिड यू कम इनटू दिस फील्ड
4: ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ
3: ਜੀ
4: ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ
3: ਜੀ
4: ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ
3: ਜੀ
4: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ
3: ਜੀ
4: ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ
3: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ
4: ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ 7-8 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਲ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
3: ਜੀ
4: ਗੋਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ

0: 4003-404-3500 संपर्क करो।
1: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदे ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी का पता पूछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकते हो अपनी पसंद की फ्लोरिंग का समान। फ्लोरिंग घर का होवे या होवे कमर्शियल, नवा लगाना होवे या होवे रेनोवेशन का प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग के डिजाइनर नाल भरिया है इन्हों का शोरूम। अज ही इन्हों के शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते, पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हैं। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो, जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार।
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
4: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
4: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
4: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222।
5: अपने घर दा दूजा नां आया सुकून, ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
3: घर खरीदण तों पहलां इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
5: वधिया घर खरीदना है, पैसे बचाउणे ने, सिरदर्दी तों वी बचणा, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
3: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचणा भी होवे तां बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
5: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
3: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
5: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
3: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
6: रोड ते नवा ट्रक चाड़न लई ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ।
7: ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਲ 587-832-1208 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮਾਨਸ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 587-832-1208।
8: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਖੁਦ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

0: बड़ी कोई चक्कर ही नहीं, सीधे चले आओ। इतने वॉक इन विच खुला स्वागत है। नवे पेशेंट्स दा भी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4496। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाड़ी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
1: नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका। फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
2: ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ।
3: ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2: ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸੀ।
3: ਲੈ ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ 403-607-4408।
2: ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ, 4 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ। 403-607-4208 ਅਕਾਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਸਿਰਫ $7 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਸ਼ਾਟ, ਸੁੰਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-947-0060, 403-947-0060 ਜਾਂ ਆਓ ਯੂਨਿਟ 530-669 ਸਵਾਨਾ ਬੁਲੇਵਰਡ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਪਿਕਸਲ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ।
4: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 एफएम पर। हमने अभी बात की एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर से जो कि आपके लिए एक नई फिल्म लेके आ रहे हैं, तो आप जरूर वो फिल्म को देखें। हमारी जिंदगी में जो हमारी सेहत है वो बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अपनी सेहत को नहीं प्रॉपर रखेंगे तो बाकी आप जो मर्जी कर लो, आपको बिल्कुल भी ना उसमें मजा आएगा, ना आपका दिल लगेगा और ना ही आप फिजिकली उसके अंदर प्रॉपर शिरकत कर पाएंगे। हमारे बॉडी में अगर कहीं छोटा सा एक कट लग जाता है उसके ऊपर हम बैंडेड लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम उस पर बैंडेड ना लगाएं तो दिन भर दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार हम बैंडेड लगा भी लेते हैं उसके बाद भी दर्द होता रहता है। तो अगर हम पूरी बॉडी की बात करें जिसमें बहुत सारी जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, किडनीज हैं और हमारा नर्वस सिस्टम है, दिमाग है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें स्ट्रांग और हेल्थी रखने की जरूरत है। आशा सर्कल एसोसिएशन ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम निकाला है, 90 डेज स्ट्रांगर। ये एक ऐप है और एक आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपकी जो सेहत है उसको मॉनिटर करा जाता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, आप कितना चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि आपको ये ऐप बताता है। अब ये ऐप क्या है, क्यों इसको क्रिएट किया गया और क्यों इसको हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, उसको बताने के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़े हैं आशा सर्कल से, तमन्ना जी, सुनीता जी और गुंजन जी, जो कि हमें बताएंगे ये 90 डेज स्ट्रांगर के बारे में। सो आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि ये ऐप क्या है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
5: थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर।
4: तो तमन्ना जी आपने सर पे एक बहुत ही ब्यूटी

0: ताज जिसको मैं कहता हूँ, और पहले तो इसके बारे में बताइए कि आप मिसेस नॉर्दर्न अल्बर्टा 2026 चुनी गई हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले ये बताइए।
1: ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है और इसको पहनना उससे भी ज्यादा बढ़िया है। और मैं न्यूली क्राउंड हूँ, जिसे कहते हैं ना नई बबू, एकदम न्यूली क्राउंड हूँ। 28th of June I was crowned as Mrs. Northern Alberta 2026. और अगर मैं शेयर करना चाहूँ, आई थिंक मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती। इट्स सो सो सो इमेंस ग्रैटिट्यूड और खुशी के साथ that I am crowned and now I have to serve my country, my province, and I have to do right things. That's why I'm right sitting here getting 90 days stronger, ताकि हम सारे साथ में चले और एक दूसरे को और पूरी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करें।
0: अब देखिए, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिसको लेके आप आगे बढ़ी हैं, तो उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने जो चीज आपने कहा कि मैं करूंगी और उसको आप ना करें, तो हम भी कहेंगे कि ऐसा नहीं चलेगा। है
1: वही वाली बात होगी, जैसे पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन कुछ बोलते हैं तो उसे वो करें या ना करें, बट बीइंग अ क्राउन क्राउन एंड बीइंग अ क्वीन, मैं उसे पूरा करूंगी जो मैंने बोला।
0: नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं है कि आप कोई दिखावा करेंगे पूरे। हम ये जानते हैं कि अगर आप आशा सर्कल से जुड़ी हैं और साथ में आपके यू नो पूरी टीम है, तो वो आप दिल से ही करेंगी, और ये हमारे को 100% यकीन है। तो उसके बाद हम चलते हैं सुनीता जी पे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से प्रोग्राम में। तो ये क्या प्रोग्राम है 90 डेज स्ट्रॉन्गर जो आप लेके आए हैं?
2: थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली ये हम लेकर इसलिए आए हैं कि घर में बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर सनी अर्जुन धूपर
0: जी,
2: और वो मुझे देखता था कि मेरी सांस फूल जाती है
0: जी।
2: तो वो कह रहा था कि हमारी एशियन कम्युनिटी में 30s के बाद ही लोग डिप्रेशन, डायबिटीज और हार्ट अटैक के पेशेंट हो रहे हैं।
0: सॉरी, 30 आपने बहुत बाद की बात करते हैं, आजकल तो 18, 19, 20 में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
2: हाँ, ये क्योंकि बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है
0: जी, बिल्कुल,
2: के लोग ऐसे कर रहे हैं
0: जी।
2: लेकिन उसने मुझे लास्ट ईयर ट्रेनिंग दी, मेरे को उसने वैसे पूछा, मम्मी आपका कोई ड्रीम हो तो बताओ। मैंने कहा मेरा ड्रीम है कैलाश यात्रा करना।
0: अच्छा,
2: तो कहता आपकी जो हेल्थ है उसमें तो आप कर नहीं सकते। तो मैंने कहा मैंने टिकट बुक करा ली है, कहता मैं टिकट कैंसिल कर दूंगा अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं लेते।
0: अच्छा,
2: उसने मुझे ट्रेन किया और मैंने उस ट्रेनिंग से अपनी कैलाश यात्रा पूरी की विदाउट कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार नहीं हुई। मेरे से यंग लोग वहां बीमार हो रहे थे, मुझे कुछ
0: ये पॉलिटिक्स वाला बात तो नहीं है ना, सच्ची बोल रहे हो ना आप? कैलाश यात्रा करके आई हैं आप? कमाल है, कमाल है। नहीं नहीं, उसके लिए आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं।
2: छोड़ दिया था, मैं ट्रेनिंग में ही थी।
0: अरे वाह।
2: उसके बाद जब मैंने बात करी, क्योंकि हम हनुमान जयंती करते हैं, तो हनुमान जी शक्ति के रूप है, और मैं कहती हूँ मुझे हनुमान जी ऐसे ले गए, ऐसे ले आए वापस।
0: क्या बात है।
2: तो उसने मेरे को बोला कि मम्मी आप हनुमान जयंती करते हो, आप क्यों नहीं ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड करो।
0: अच्छा।
2: उसने हमारे को बहुत हौसला दिया और उसने ये ऐप खुद बनाई है
0: जी।
2: और उसने बोला कि आपको ना तो वेट लूज करना है, ना खाना छोड़ना है, आपको वॉक करनी है। वॉक कर रहे हो, वॉक एंड टॉक कर रहे हो, साथ चलते जा रहे हो, बात करते हो, तो लोगों का डिप्रेशन भी खत्म होगा
0: जी।
2: और 90 डेज तक तो आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप तैयार हो जाओगे कि अब मेरे को ये वॉक नहीं बंद करनी, मुझे एक्सरसाइज नहीं बंद करनी है, मुझे फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है, वहां जाना। आप खाओ पियो जो मर्जी हो, ऐश करो, लेकिन अपनी हेल्थ को दो। हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी देंगे हेल्थ के लिए, तो हम 10 साल बाद ये तो बोलेंगे कि आज हम अपने बच्चों के साथ, मैं अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेल रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, उम्र के साथ देखो सब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप आज से शुरू कर लो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर हेल्थ देखो तो हेल्थ है तो वेल्थ, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। हम यही कह रहे हैं, 10 मिनट चलिए, खाना खाते ही नहीं लेट जाइए, टीवी के आगे मत बैठिए, फोन लैपटॉप, यही लाइफ रहेगी लोगों की। हम लोगों को वापस ला रहे हैं और हमारी कम्युनिटी, फैमिली हेल्दी, कम्युनिटी हेल्दी, तो कंट्री हेल्दी बनेगी।
0: क्या सोच है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गुंजन जी, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, बड़ी ये कड़वा सच है, हम लोगों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ। एक तो हम कल का सोचते नहीं है, पहले तो ये होता है कि यार आज देख लो आज क्या है, ठीक है ना। मेरा वजन चाहे जितना मर्जी हो, लेकिन मेरे को खाना वही

0: है जो कि मेरे को खराब करेगा। अच्छा चलो खा लिया, अब जैसे सुनीता जी ने बोला कि भाई जो मर्जी खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन अब अपना टाइम तो देखो, मतलब कि हम लोग चाहे जो मर्जी काम करते हो, हमने खाना वही 9-9:30 बजे है, और खाना भी हमने ऐसा है कि भाई हमारे खानों में घी तैरता है, और हम चाहे वेज हो नॉन वेज हो, लेकिन फिर भी हमारे जो मसाले हैं वो जबरदस्त होते हैं। उसके बाद अब हमारा यहाँ का वेदर ऐसा है कि गर्मियों के अलावा सर्दियों में हम लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते, -40 में बंदा कौन सैर करने जाएगा, लेकिन हमारे घरों में ही हम लोग एटलीस्ट अपना जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर तो कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो अब ये तो 90 डेज तो अब ये आया है प्रोग्राम, लेकिन आप एक अपने घर को चला रही हैं, अपने परिवार को देखती हैं, तो जस्ट एज नॉर्मल पर्सन जो कि अपने एक हम कहते हैं ना एक नागरिक, आपके हिसाब से हम कहाँ गलती करते हैं अगर हम खाने पीने को लेकर चले?
1: खाने पीने को अगर हम देखते हैं तो हम वही खाना खाएं पर थोड़ा लिमिट में खाएं। ये नहीं कि आज हमें बहुत पसंद आ रहा है छोले भटूरे खाने को बंद कर रहा है, ठीक है आप खाएं जरूर, पर आप कह रहे जैसे विंटर्स है नहीं आप सैर कर सकते, अगर आप घर से बेसमेंट से ऊपर स्टेयर्स भी 10 बार ऊपर नीचे हो जाए आपकी वॉक।
0: और मेरी मम्मी जैसे मेरे गोटे दुखन लग गए, मेरे गोटे आज प्रॉब्लम होगी, वो तो यहाँ शुरू हो जाती है।
1: नहीं होगी, आप एक बार ट्राई शुरू करें।
0: मैं वही आ रहा हूं, मतलब कि मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे घर घर की कहानी है कि हम लोग जो है प्रॉपर देखते नहीं है खाना पीने। अभी तो गर्मियां हैं, अभी भी देख लो हार्डली आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो लोग बाहर वाकई सैर करने आए होंगे खाने के बाद। खाने के बाद जो लोग एक ट्रेंड, जैसे हमारे इंडिया में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, आप सोसाइटी में रहते हो कहीं भी रहते हो लोग निकल आते हैं बाहर खाने के बाद, चाहे वो 10 बज रहे हो लोग बाहर आ जाते हैं, जो पान खाने जाए या एक दूसरे से मिलने जाए पड़ोसी।
1: आप सुबह कभी जिम चले जाएं, क्रॉस आयरन मॉल चले जाएं, आप सुबह 8 बजे देखेंगे वहां लोग कैसे वॉक कर रहे हैं। शॉप बंद है, सब कुछ है, जिसने वॉक करना है वॉलमार्ट में वॉक कर लेते हैं। हाँ। कई लोग सिर्फ वॉलमार्ट में आप देखोगे सिर्फ वॉक कर रहे हैं, सुबह जैसे 8 बजे खुला सिर्फ वॉक करते हैं, 10 राउंड लेते हैं और चले जाते हैं।
0: मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ सीरियसली, मतलब कि वो सर्दियों में यही करते हैं, मतलब कि उनके लिए क्रॉस आयरन जो है वो एक जिम है, और वो वहां पर मियां बीवी जाते हैं और सुबह अपना नाश्ता करने के बाद या लंच करने के बाद दोपहर में वहां पे वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं, वो कहते हैं भैया हमारा खाना हजम हो गया, वी आर फिट, वी आर गुड।
1: एग्जांपल देती हूँ, हमारी भी नी की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलती रहती है, बिकॉज यहाँ पे आर्थराइटिस कोल्ड रहता है, ये वो रहता है। अभी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया अभी स्टैम्पीड में, मैंने वहां बॉलीवुड डांसर था, मेरे साथ जो भी ग्रुप में वो 20 गर्ल्स थी वो सारी यंग गर्ल्स थी।
0: अच्छा।
1: मैं सिर्फ एक एज की थी, और उस सब मुझे ना आंटी आप तो इस वन में भी डांस कर रहे हो, आंटी अब ये कर रहे हो, तो मैं उनको कहा ये आप सब करो, वॉक करना सीखो, अपने आप केयर करो, जो खाते हो वो लिमिट में खा लो, पर थोड़ा वॉक शॉक करो तो आप भी मेरी स्टेज पे आके ये सब कर सको।
0: जी जी जी,
1: सब कुछ हुआ अच्छे से हुआ, मेरा स्पेशल था, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया कि दिस वॉज द ओल्डेस्ट लेडी इन आवर ग्रुप एंड एवरीथिंग, बट अगर आप अपने आप को मोटिवेट करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप हेल्दी हो तो आपकी फैमिली हेल्दी है, आप टेक केयर कर सकते हो, सारा कुछ कम्युनिटी अच्छी बिल्डअप हो सकती है, बिकॉज इट्स अ फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड नाउ, आप सब पीछे भागे, पर हेल्थ इज ऑल्सो योर प्रायोरिटी।
0: नो एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। सो दोस्तों ये है 90 डेज वॉकिंग चैलेंज, वॉक टूगेदर विद पीपल यू नो, नो जिम नो इक्विपमेंट जस्ट वॉकिंग। तो आप ये कुछ सोचें कि सिर्फ आपको इन्वेस्ट क्या करना है, अपना टाइम, और आपके बाकी सब चीजें अपने आप प्रॉपर चैनल में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप अकेले वॉक कर रहे हैं तो अलग बात है, आपके स्पाउस साथ में है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो दोस्तों के साथ बातचीत भी हो जाएगी, मस्ती भी हो जाएगी, और साथ में आपकी वॉक भी हो जाएगी। तो तमन्ना जी आप इस 90 डेज चैलेंज को कर रही हैं आजकल, कितना टाइम हो गया?
2: नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी एक पास्ट है, मेरी बैक इंजरी हुई थी 2022 में, जबकि मैं वो मॉम थी जिसके 3 बॉयज हैं, और मैं 24/7 आना एक्टिव मॉम।
0: ये पॉलिटिकल बात तो नहीं है, पक्की बात है, 3 बच्चे हैं, 3 है, लगते कहीं से नहीं
2: है। एक और बड़ा वाला भी है।
0: हाँ वो तो देखो वो सभी का होता है, वो तो जो बॉय बेचारा है वो तो सुनीता जी के इस उम्र में भी हो, मैंने देख लिया अभी।
2: हाँ फोर बॉयज है एंड जिनके यहाँ पर है वो जानते हैं yes. मेरी हालत क्या होती है, तो आई वाज एक्टिव मॉम जो कि 24 घंटे चलती रहती है, और जब मेरी बैक इंजरी हुई मुझे ऐसा लगा कि ये तो कुछ नहीं है, झटका है, लेकिन

0: after 40, right at 40, I would say, वो back injury मेरी life की injury बन गई, वो हल्का सा झटका.
1: Yes.
0: तो मैं मतलब physio, chiro, osteopath, मैंने 2 साल सब कुछ किया और मेरा हर एक जगह जाकर सिर्फ एक question होता था कि मैं इतनी active हूँ, ये मुझे क्यों हुआ? तो उसका आंसर मुझे वापस मिला था दैट यू वर टेकिंग आउट लाइक हाउ मेनी 20 लेडीज, मतलब 20 औरतों का तुम अकेली अपने शरीर से निकाल रही हो, कुछ वापस भी तो डालना है. तुमने स्ट्रेंथन किया अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को. तो और स्ट्रेंथन करना क्या होता है, वेट तो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारी कम्युनिटी नहीं करती है, तो मैं उसके ऊपर एनकरेज करूंगी, लेकिन फिजिकल एक्टिव होना, बाहर जाना, वॉक करना, ये छोटा सा स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहूंगी, अगर आप जितने गोरे हैं हमारे, मैं YMCA, आई एम अ एक्टिव वॉलंटियर, आप मुझे पूरी कैलगरी में कहीं ना कहीं वॉलंटियर करते हुए देखोगे, तो मैं YMCA में भी एज अ एम्प्लॉय भी थी और अब वॉलंटियर कर रही हूँ. वहां पर मेरे साथ के जो 70 और 80 साल के बुजुर्ग हैं, दे कैन ड्राइव, दे स्विम, वो वॉलंटियर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं. वाई? और अगर मैं अपने घर की बात करूं, मेरे पास भी एक मदर इन लॉ है 77, वो ज्यादा चल नहीं पाती है, उनके घुटने दर्द होते हैं. फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि वो गोरे सारी जिंदगी एक्टिव रहे हैं, उन्होंने काम किया है, वो 24 घंटे चलते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जहां के हमारे लोग जैसे ही 40-50 पे आते हैं, उनको ऐसा लगता है बैठ जाओ अब हमारी उम्र हो गई है. तो ये उम्र वाला जो सवाल है, ये रोकना है और हमें एक्टिव होना है, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ट्रैक पे शुरू करना है कि हम 50 पे बूढ़े नहीं हो रहे, हमें 70, और हम उस कंट्री में रह रहे हैं जहां के बुजुर्ग 80 और 90 तक जीते हैं. तो हम इंडिया वाले नहीं है कि 70 हो गए और लाइफ खत्म हो गई. 70 के बाद तुम बेसिकली अकेले हो गए, क्योंकि हमारे बच्चे यहां पर पल बढ़ रहे हैं और वो हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता. तो इसलिए अपनी टेक केयर करना, अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखना, इसलिए हम ये चैलेंज लेके आए हैं. और मैं तब से, जब से मुझे ये आंसर मिला है कि मुझे अपने आप को गिव बैक करना है अपनी बॉडी को, बिकॉज आज तक मैं सिर्फ निकाल रही थी, मुझे वापस देना है, तो मैं ये 90 डेज से पहले भी कर रही थी. इसीलिए सुनीता जी मेरे को इसमें लेके आई कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ और जो कर रहा है वो क्यों ना साथ में चले मिले.
2: नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, अगेन इसमें भी चलना ही है सुनीता जी, आपके साथ सोच चल रहे हैं तो साथ चलते रहे, कारवां बनता गया, राइट, अकेले चला था मैं.
1: और जिस इसने भी एक बात बोली ना इंडिया में, आप देख लीजिए हमारे योगी, हमारे दादा दादी 105, कभी उन्होंने हेल्प नहीं मांगी, हेल्दी लाइफ नहीं, लेकिन उनको हमने देखा है कि जैसे वो डिनर खाती थी, कहती थी बस हाथ पकड़ के मुझे 20 मिनट 20 मिनट
2: वॉक करा दो.
1: और मैंने उनको सारी जिंदगी हेल्दी देखा, कभी डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटते देखा. हम काट रहे हैं
2: क्योंकि हम लोग बहुत लेट शुरू करते हैं. करेक्ट में आप तीनों बैठी हैं, आप करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग. हम लोग ना अपनी सेहत के बारे में अवेयरनेस बहुत लेट शुरू करते हैं, मतलब कि जब, जैसे आपने कहा, 50s में आ गए, प्रायोरिटी के अलावा हम लोग सोचते नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, ये अपने देखा जाएगा, कि हो गया वो थोड़ा जा प्रॉब्लम हुई है, आपू ठीक कर लेने, मतलब कि हमारी, अब वी आर नॉट सीरियस अबाउट अवर सेल्फ्स. हम किसी दूसरे को कुछ हो जाए तो हमेशा अरे यार क्या हो गया तेरे को, लेकिन अपने बारे में लोग सीरियस नहीं रहते, जबकि हमें उतना ध्यान अपने बारे में भी रखना चाहिए. और अगर हम ये अवेयरनेस By the time like we become a teenager, 18-19 साल में अगर हम अपने आप को अवेयर रखें इन चीजों के बारे में, तो आई थिंक when we come to that age which will be 60 or 70, we won't have that problems जो कि हमें अब देखने को मिल रही है. So, आप कुछ कहना चाह रही?
0: मैं इस पे एक चीज ऐड करनी चाहूंगी. आई थिंक फैमिली को अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म और अपना वेट कंट्रोल करने का तरीका अलग है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो कोई मतलब खाना खा रहा है तला भुना. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, ही इज अ लाइक फूडी, वो बहुत तला भुना खाता है, लेकिन वो कंट्रोल कैसे करता है, वो स्क्वॉश खेलने जाता है और वो वहां से कंट्रोल करता
2: है. या, मम्मी है ना.
0: अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा वेट गेन जल्दी होता है, मैं स्क्वॉश नहीं खेल सकती हूँ उतना, मैं हाई इंटेंसिटी करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, और बीइंग अ मॉम मेरे पास इतना टाइम
2: नहीं,
0: मैं जिम जाऊं और अपने घंटे वेस्ट करूं वहां पर,
2: जी, जी.
0: तो मैं अपना खाना कंट्रोल कर लेती हूँ और मैं वॉक मेक श्योर करती हूँ कि 10,000 स्टेप्स मैंने रखा हुआ है, जो कि विंटर्स में नहीं होते फॉर श्योर, लेकिन विंटर में 4-5 कहीं ना कहीं एम करना पड़ता है. तो अब मैं अपनी बात पे आ रही हूँ, जो मैं कह रही थी, जैसे मेरा बेटा है 11 साल का है, 3 लड़के हैं, तीनों में से एक सिर्फ 11 है जिसने सडनली वेट गेन करना शुरू किया.
2: हमारे पास 3 मिनट है जी,
0: तो उसके वेट गेन के लिए मैं सिर्फ एक्टिव

0: और उसको मैंने सिर्फ यही बोलना शुरू किया है कि बेटा बाइकिंग करना शुरू कर दे और वॉक करना शुरू कर दे, क्योंकि 11 ईयर पे ही स्टार्ट करना है. मैं 20 होने पर तुझे नहीं बोलूंगी कि मोटा हो गया, 11 पे हुआ और अभी फिक्स करो.
1: एब्सोल्युटली. सो दोस्तों, ये एक ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. सुनीता जी, कैसे डाउनलोड होती है ऐप? आपके
2: एप्पल स्टोर है?
1: एप्पल स्टोर पे है
2: ये पूरा.
1: ठीक है,
2: यहाँ पे क्लिक कर लेंगे.
1: ठीक है,
2: वो उनको गाइड कर देगा और उसको रात को सिंक करना है
1: जी,
2: तो हमें भी पता रहेगा. और 90 डेज के बाद में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे, कौन जीतेगा.
1: अच्छा,
2: कम्युनिटी जीत रही है, फैमिली जीत रही है, सिंगल जीत रहा है, फ्रेंड्स का ग्रुप जीत रहा है, तो तीन इनाम रखेंगे.
1: एवरी 90 डेज होगा ये?
2: हाँ, अभी पूरे 90 डेज
1: एंड ऑफ सितंबर में. तो अगर मैं आज ज्वाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो लेकिन जब मर्जी आप शुरू कर सकते हैं.
2: शुरू करें, आपकी एक्टिवनेस बताएंगे. साथ चल रहे हो तो आप कभी फोटो खींच के डाल दीजिए आशा सर्कल के ऐप के ऊपर कि हमने आज ये मिलकर ये किया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि आप कितना एक्टिव हो, क्योंकि हमने भी तो इनाम देना है
1: बिल्कुल. सो दोस्तों, आशा सर्कल एसोसिएशन आपके लिए लेके आए 90 डेज स्ट्रॉन्गर. आप देख सकते हैं जो और सुन रहे हैं, सुनीता जी ने कैलाश की यात्रा करी है, तो मायने रखता है कि बहुत कठिन यात्रा है और उस उम्र में जाके उसको करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड साइन विच सेज दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड इट द एज इज नॉट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. तो आप चाहे 17 के हैं, 18 के हैं, चाहे आप 50 के हैं, चाहे 60 के हैं, आप इसकी शुरुआत करें और इस 90 डेज स्ट्रॉन्गर चैलेंज को अपनाएं. आशा सर्कल में जाके इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और स्टार्ट दैट टुडे. सो थैंक यू सो मच लेडीज, आप आए और अपने इनसाइड आपने बताई. बिफोर वी एंड टुडेज प्रोग्राम, सबको 10-10 सेकंड क्या कहना चाहेंगी? लेट्स स्टार्ट विद गुंजन जी.
3: खाने की बात करी थी ना आप, मैं आपको बताती हूँ हम क्या रूटीन फॉलो करते हैं. अगर 4 दिन खाया, 1 दिन फास्टिंग.
1: अच्छा, क्या बात.
3: तो आपको
1: बैलेंस रह जाता है,
3: भी नहीं होती और वो नहीं.
1: पर वॉक जरूर करनी है.
3: वॉक तो करनी है, पर उसके साथ अगर आपने 4 डेज करा, 1 दिन आप फास्टिंग करके अपने बॉडी को रेस्ट और बैलेंस करें.
1: क्या बात है तमन्ना जी.
0: मैं बोलूंगी कि खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना शुरू करें लाइफ में, इट विल मेक योर लाइफ इजी. जस्ट 10 मिनट्स आफ्टर एवरी मील.
1: क्या बात है सुनीता जी.
2: सेम थिंग, अगर आप खा रहे हो पर आप चल रहे हो और किसी को साथ लेके जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपका सारा डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, खुशहाल जिंदगी जियोगे.
1: क्या बात है. तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आशा सर्कल की ये ऐप जरूर डाउनलोड करें और इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं. वॉकिंग करें और इसमें ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, ना कोई महंगा आपने सामान खरीदना है. आपके साथ एक चलने वाला होना चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए, आपका आपकी स्पाउस होनी चाहिए, बच्चे हों जिनको लेके आप बाहर निकलें. गर्मियों का टाइम है, अभी सितंबर तक अच्छा मौसम रहने वाला है, तो 3 मिनट तो मस्ती करें और बाहर निकल के वॉक करें. आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम मौलियो 94.7 FM पर. आपसे विदा लेने का टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं, तो आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार. जब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें. हैव अ Good night. कल की
4: पूरा साल हो गया गाना सुनती, बस कैलगरी च कर लेंगे फीलिंग ले जायो. वीर दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने का मन बना लिया है. उन्हां दे आउण तो पहला मेनू घर चाहिए.
5: मेरी कल ही गल हुई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल, जिन्ना दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं दो लवांगे, पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई. मैं सुनिया जग्गी ते लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे आ.
4: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियल्टी नाल काम कर दे जग्गी ते लो नाल एक बार जरूर गलबात करो. जग्गी ते लो दा फोन नंबर है 406-16-2445 403-616-2445.
6: जिंदरा मैं आ मेरा भतीजा, आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भूआ दी ननान दी कुड़ी है. ओ तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिरदा.
7: ओ पाजी, ये असी नहीं, JFS इमिग्रेशन वालिया ने कट्ठा करके दिता है. JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील. कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004.
8: ओहो, आज फेर नहीं लोड मिलिया.
9: की होया?
8: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना 2 दिन.
9: ओहो, रह गए ना फेर पिछे. मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दें.

0: शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835-2222

0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
1: सोने घर की निशानी होती है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते, पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
3: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.